0: गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुमरिया, तुम मेरी प्यारी सुमरिया।
0: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूँ कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूँ। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवा कर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का

0: कान मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
1: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
0: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
2: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
3: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
3: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
3: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
4: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
4: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के। लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
4: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
4: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे पिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
4: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
4: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
4: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूँ तो

0: वो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
1: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
2: हाँ जी, बताइए।
1: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
2: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
3: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
4: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
5: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
5: ये जन से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
5: है? अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला कितने का है?
5: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
5: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
5: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
5: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
5: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
0: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
5: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
5: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
5: अच्छा अच्छा समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है, मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
5: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
5: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि
0: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए,
5: अब
0: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।

0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
1: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଗାନ ସମୟରେ ଯାହାର ନେତ୍ରରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଝରିପଡ଼େ ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଉପାସନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ବାଣୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜି ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେକରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ही मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनजुनी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को आरंभ करिबा। सकाळ आसीछि अनेक आशा को नहीं, सकाळ आसीछि अनेक विश्वास को नहीं। एक कोळ सकाळ रे असंत प्रभु को पाद पद्म रे समर्पित बा भक्तिर पुष्पांजलि भावर स्वरांजलि अर्घ्य थाळी।

0: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଉପଚାର ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1455 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।
1: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
2: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजनार यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रु मु पूरा मुक्ति।
1: सतरे भाई?
2: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
3: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
4: हाँ बंधु, आज हूँ महाप्रभु पवित्र बाहुड़ा यात्रा। बाहुड़ा यात्रार गोटे दिन पूर्व गुंडीचा मंदिर नाकचणा द्वार सम्मुखें तीन रथ को दक्षिण दिख को मोड़ कर पहंडे मध्यम तीन ठाकुर रथ को विजय करेंगे। बाटे महाप्रभु निज मौसी माँ अर्धासिनी मंदिर निकट में अटकवे आ पारंपरिक पोड़पीठ भोग ग्रहण करेंगे। श्रीनगर निकटने रंदीघोष रथ पहुंचा पर माँ लक्ष्मी और प्रभु नारायण को मध्य एक मनोज्ञ भेट नीति भी अनुष्ठित होते भक्त भाव बड़दाण में गढ़ीज तीन रथ सिंहद्वार अभिमुखे फेरी आसवे महाप्रभु नवदिनात्मक से रथ जा श्रीगुंडीचा जा सारी आज बाहुड़ा जत्र।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: से जगतरनाथ जगन्नाथ लीलामय ठाकुर କେତେ ନାଟ ତାର, କେତେ ଲୀଳା ତାର। ନଅଦିନ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ, ଜନ୍ମବେଦୀକୁ, ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତରେ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्री गुंडीचा भली समस्त नीति नियम शेष परे छेरा पहरा आउ तापरे रथ दौड़ी लगी रथटणा आरंभ हुए बाहुड़ा जात्रा रे मध्य श्री बलभद्र आउ देवी सुभद्रांक रथ प्रथमे टणा हुई सिंहद्वार लगे आउ जगन्नाथ महाप्रभु रथ मरीचकट निकट श्रीनगर ठारे पहुंचा पर लक्ष्मी नारायण भेट होइथाय। अभिमानिनी लक्ष्मी मा चाहणी मंडप को आसी महाप्रभु को चाहणी करिथांति आउ तापरे नंदीघोष रथरे विराजमान करथवा जगन्नाथक सहित तांकर भेट हुए। रथ प्रदीक्षण आउ महाप्रभुक आज्ञामल पाई लक्ष्मी ठाकुरानी श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय करिबा संगे संगे श्रीनगर ठारु नंदीघोष रथ टणा जाई सिंहद्वार रे पहुंची थाए। एभली तीनी रथ बाहुड़ा जात्रा रे जाई सिंहद्वार सम्मुखरे विजय करिथांती।

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
3: ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानकु सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चाषी ऋणी ओ अणऋणी चाषी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकू पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि ओ समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
4: सुनतले 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक वे असंत सुनिबा कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। मॉर्निंग अपडेट रे आपण मन पई रहिछि आज सकाळ रिपोर्ट कहुछि सूर्योदय आज सकाळ 5:19 रहिछि सूर्यास्त होइछि 6:28 रे। आज दिन पाणीपाग कथा जदि कहिबा वर्तमान कटक भुवनेश्वर आखपाख अंचल तापमात्रा रहिछि 28 डिग्री सेल्सियस मध्ये रे। आज सर्वाधिक तापमात्रा रहिबो 32 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वनिम्न रहिबो 27 डिग्री सेल्सियस। ए थिला आज सकाळ मॉर्निंग अपडेट। तो बंधु आज दिन

उच्च न्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेष रूपेण नाम निर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षास अधिनियम सम्बद्ध प्रकरणानां तथा तैः सह सम्बद्धानां अपराधानां श्रवणं भविष्यति। 30,000 न्यायालयस्य मध्यस्थता केन्द्रस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर बलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षासु अनुचित साधन सम्बद्ध प्रकरणानां शीघ्र निर्णयं सुनिश्चेतुम् अस्ति। एषा अधिसूचना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणेषु संलिप्तानां व्यक्तिनां शीघ्रं कठोर दण्ड विधानार्थं शीघ्र न्यायालय स्थापनायाः घोषणानन्तरं कतिपय होरानन्तरम् एव प्रख्यापिता।

0: 그러면. 오리사 সরকারଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚଳିତ 2026 ମସିହା ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ନିଜ ଫସଲ ଧାନ ମକା କପା ଅଦା ମାଣ୍ଡିଆ ଚିନାବାଦାମ ହଳଦୀ ଓ ହରଡ଼ ଚାଷର ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଋଣୀ ଓ ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫସଲର ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जे कोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि ओ समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
1: ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯୋଗ ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରୋଗ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ। ଯୋଗ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗଠନ, ମାନସିକ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସକାଳର ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବା। ଏବେ ଶୁଭ ସକାଳର ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍କୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିବରଣୀ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
2: आवाजें अनेक, नारा एक। अगले 10 दिन सात समुंदर पार स्कॉटलैंड के ग्लासगो की फिजाओं में भी इंडिया इंडिया के ये नारे गूंजते सुनाई देंगे, क्योंकि आगाज हो चुका है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का।
3: Javelin champion Neeraj Chopra is the big attraction. He won gold at the 2018 Commonwealth Games. Boxer Novina Borgen is back as well and brings in the baton. Three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag. He won 61 medals last time in Birmingham, a long way from a single bronze at their first game in 1934.
4: 123 खिलाड़ी 10 अलग अलग खेलों में टीम इंडिया की जर्सी पहन तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए उतरेंगे और उनके साथ उतरेगी करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाएं, उम्मीदें और शुभकामनाएं।
2: अलग अलग भाषा वेशभूषा वाले सभी देशवासियों की धड़कन एक होगी। नीरज चोपड़ा का हर भाला जब आसमान की ओर जाएगा तो उसे देखने वाली निगाहें अलग अलग होंगी, लेकिन उम्मीद एक होगी।
4: लवलीना का हर पंच सिर्फ सामने वाले को पीछे नहीं धकेलेगा, शायद किसी छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाएगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं।
2: मीराबाई चानू जब वजन उठाएंगी तो सिर्फ बारबेल का वजन नहीं होगा, उसमें करोड़ों उम्मीदों का भार भी होगा और उसे उठता देखकर शायद हमें भी अपने कंधे थोड़े मजबूत लगेंगे। खेलों में मुकाबले अलग हो सकते हैं, लेकिन सपना एक है, अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना।
4: हाँ, इस बार खेलों का दायरा कुछ सिमटा हुआ है। 2022 में बर्मिंगम में हुए संस्करण में जहां 19 खेल थे, तो वहीं इस बार सिर्फ 10 हैं। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, स्क्वॉश और टेबल टेनिस जैसे वो तमाम खेल जिसमें भारत ने ढेरों पदक जीते, वो इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है।
2: इसलिए कुल पदकों की संख्या कम होना तय है, और बता रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतिनिधि हिमिका चौधरी।
5: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 33 मेडल्स हम लेके आए. जैसा कि सबको पता है अब कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स है, हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं.

0: हैं इस वाले ग्लासगो सीडब्ल्यूजी में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा।
1: इसी साल जापान में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों के लिहाज से भी कॉमनवेल्थ गेम्स बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और भारत की महानतम धावकों में से एक पीटी उषा से बेहतर ये कौन जानता है।
2: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड। एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनी वे टू मंथ्स इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी वॉट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू, ऑल टीम विल बी देयर।
1: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है।
3: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा।
1: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंघम 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था।
3: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है, 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी, और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
4: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green and this Glasgow is indoor carpet. So we are going a few weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
1: उसका असर देखने को मिला। विमेन पेयर्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है।
3: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता, जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी। इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। तो वहीं मेन सिंगल्स में उटुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया। उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा। पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में है, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने ये दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है।
5: नहीं, मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
3: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है। नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था।
1: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्रीशंकर। बर्मिंघम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स

0: मिस करना पड़ा था, लेकिन मुरली श्रीशंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।
1: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं।
0: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर। हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022 बर्मिंगम में इन्होंने जिताया था
1: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे। 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं। क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर।
0: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी।
1: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10000 मीटर और 5000 मीटर, वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन हैं, अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
0: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था।
1: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी।
0: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे।
1: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का।
0: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
1: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
0: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
1: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश, नरेंद्र, सचिन, सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
2: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
1: इनके अलावा नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर, जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
0: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
1: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
0: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्री स्टाइल, जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
1: पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
0: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परभजी

0: अजीत कुमार नजर आएंगे।
1: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइट वेट कैटेगरी की। हैवी वेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
0: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन किलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी। और जब खेलों का ये महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे, तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दैनिक झलकियां कॉमनवेल्थ गेम्स की।
3: स्कॉटलैंड ग्लास्गो ठारे अनुष्ठित कॉमनवेल्थ गेम्स राज्यगोष्ठी क्रीड़ार डेली हाइलाइट रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 100.4 आकाश बड़े फेम रेनबो कट दिल से दिल तक आपण को शुभ सकाळ को पुण थरे स्वागत। बंधु, इतिहास तो अनेक कथा लेखि रखे अतीतर आईना रे, किछि लिपि जाए कालर अळंधुरे, आउ किछि मने रे जाए स्मृति पटरे चिरदिन। तो इतिहास आईना रे देखिले आजिर दिवस को कथा दिरी कहिबा। आज अनेक गुरुत्वपूर्ण दिवस बहन करे, जेमिति कि आज तो बाहुडा यात्रा, जगा जगन्नाथंकर बाहुडा यात्रा, जन्मवेदीरु रत्नवेदी को फेरिबे। ता सहित आज होउछि जातीय कजन दिवस बा संपर्कीय दिवस, सामाजिक प्राणी मनीष पाई संपर्कीय गुरुत्व बहुत, से छाड़ी से रही पारे दिवस वार्ता। आज हूँ सामारिटन सचेतनता दिवस, अर्थात 24 घंटा जो मैंने स्वेच्छाकृत भाव सेवा जोगे आई स्वेच्छासेवी अवदान को मन पकड़ा हूँ आज दिवस गुरुत्व बहन कैसे। आज हूँ जातीय आयकर दिवस, एमती भाव देखिले अनेक

मनोज कुमार का अभिनेता प्रमुख सिनेमा मध्य रची शहीद, हिमालय की गोद में, गुमनाम, दो बदन, सावन के घाट, उपकार, पत्थर की सनम, नील कमल, पूर्व और पश्चिम प्रमुख विशेष करी देशात्मबोधक गीत सिनेमारे अभिनय करिथंती मनोज कुमार। सेमती आज दिन विशिष्ट व्यक्ति अभिनेता जन्मदिन देखिले आज शिल्पपति अजीम प्रेमजी जन्मदिन, अभिनेता विजय आंटोनी जन्मदिन, गुजरात पूर्वतन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जन्मदिन, पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मलिक जन्मदिन एवं बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी प्रमुख जन्मदिन होची आज तारीख रही।

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଶୁଭ ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ପରେ ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
6: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
6: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों

0: के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ

0: भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
2: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है, पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है, वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है, यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार

0: जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश। सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का यह बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
2: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024.

कवि बनमाली दास शंकर रचना केते पुण्य पवित्र ए माटी ए श्रद्धा बाली जो श्रद्धा बाली आज पवित्र होई उठिछि कारण महाप्रभु कोटि कैवल नाथ अशरण शरण अरक्ष रक्षण विश्व वंदित प्रभु श्री जगन्नाथ जो गुंडीचा मंदिर को आसीचंती से श्रद्धा बाली रे तीन गोटी रथ अपेक्षा करिछंती आउ जो श्रद्धा बाली महाप्रभुंकर सानिध्य पाइबा परे आज पवित्र होई उठिछि जो बाली रे रहिछि आत्मीयता जो बाली रे रहिछि एते प्रेम एते आनंद एते से भाव को नहीं भक्तिर से धारा को नहीं आज जो छुट्टी आसीछंती भारत बर्षर कोण अनुकोण रु देश विदेश रु समस्त श्रद्धालु भक्त आमे देखि पारुछु से श्रद्धा बाली रो प्रांगण रे अपेक्षा करिछंती केतेबेले आसीबे महाप्रभु आउ बाहुडी जिबे से जन्म वेदी रु कर्म वेदी को अपेक्षा करिछंती अनेक श्रद्धालु किए नृत्य माध्यम रे किए सेवा माध्यम रे किए विभिन्न प्रशासनिक स्तर रे समस्त प्रभुंक निकट रे समर्पित हो जाइछंती से भावना रे जो भावना भक्त आउ भगवान कर मिलन रो यात्रा रे जो भावना मो आनंद रो आज इते सुंदर वातावरण ए पवित्र पुण्य क्षेत्र जो गुंडीचा मंदिर रो प्रांगण जोठी आज सुंदर भावरे सुशीतल पवन मन को आनंद करिबा सहित नाना भावरे जो अनेक आसीछंती श्रद्धालु माने संकीर्तन माध्यम रे मध्य एडी भक्ति भावना महाप्रभुंक पाखरे निज को तल्लीन करि दैछंती केते भावरे के उदंड नृत्य करुछंती कि भजन करुछंती कि कीर्तन करुछंती कि मध्य नृत्य माध्यम रे एई नवदिनात्मक यात्रा रो शेष सोपान रे निज को समर्पित दैछंती प्रभु आसीथिले गुंडीचा मंदिर को जो गुंडीचा मंदिर होउची प्रभुंकर आद्य पीठ काहे कि ना स्कंद पुराण अनुसार जेतेबेले दारु भासमान होई आसीथिले एई क्षेत्र रे अछंती यज्ञ नृसिंहकर मंदिर राजा इंद्रद्युम्न नृसिंहकर मंदिर को एठारे यज्ञ नृसिंह को स्थापित करी प्रभु जो गुंडीचा मंदिर जोठी आटव मंदिर बोली कहा जाए आटव मंडप काहेकि ना गुप्त भाव रे प्रभुंकर दार निर्माण कार्य करा जायतला स्वयं अनंत महाराणा नाम रे महाप्रभु निजे निज को निर्माण करितिले ए क्षेत्र रे सेथि पई ए क्षेत्र पुण्य पवित्र से यज्ञ नृसिंहकर पश्चात पट रे रहिछंती इंद्रद्युम्नंकर जो जो पोखरी वो पुष्करणी निकट रे नीलकंठेश्वर पूजा पाउछंती से क्षेत्र आदि नृसिंहकर क्षेत्र यज्ञ क्षेत्र ये होची से आटव क्षेत्र जहाँ को कहा जाए महावेदी उत्सव मध्य यात्रा को कहा जाउछि अंतर्वेदी कारण ए महावेदी कहा जीवार कारण एटी स्वयं भगवान ए वेदी रे निर्माण होइतिले ए जो प्रथम जो गुंडीचा यात्रा आरंभ होइतिला इतिहास बा स्कंद पुराण को जदि आमे आधारित करिबा ए गुंडीचा मंडप रो प्रथमे रथ यात्रा बा सेतबेले सगडी बेली जहा को कुआ जाउतला सेइथरे प्रभु विराजमान करी ए गुंडीचा मंदिर रो श्री मंदिर को जाइतिले एवं सेइठारे श्री मंदिर रे महाप्रभुंकर विग्रह प्रतिष्ठा होइतला सेई पवित्र वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि आज होउछि किंतु से आषाढ़ मास जो दशमी तिथि ए आज विजय उत्सव प्रत्यावर्तन करुछंती प्रभु जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी से मांकर कोळरु फेरि जिबे कर्म भूमि को सुंदर भाव रे समग्र विश्व को समग्र प्राणी मानंको ता कहि देउछंती से मानवीय लीला रा विस्तृत भाव रे जोठी जन्म अछि सेठी मार प्रेम मार स्नेह रहिबा सहित आमे कर्म मध्य करि जिबा आ कर्म आ जन्म आ धर्म ये होछि तीनि गोटी कथा जहा कि आमे ताकु एई मानवीय यात्रा बा जो लीला यात्रा घोष यात्रा रथ यात्रा माध्यम रे प्रभु निजे समग्र विश्व को वार्ता प्रदान करुछंती अखिल ब्रह्मांड ठाकुरंकर ए नीति रे आज आमे देखि पारुछु सुंदर भाव रे रथ गुड़िक सुसज्जित होइछंती से श्रद्धा बाली रे श्रद्धा बाली को जहाँ रे सजनी श्रद्धा बाली को जहाँ तीनि रथे तीनि ध्वजा उड़ु अछि केमंत सदिरे आहा जो सुंदर भाव रे रथ आसीतिले सिंह द्वार रु एट गुंडी

0: साधारण यात्रा नुहे साधारण महोत्सव नुहे यह जगतर कल्याण पाई समग्र विश्ववासी कल्याण पाई ये पवित्र बाहुड़ी यात्रा आज अनुष्ठित होची जन्मभूमि आज बाहुड़ी जीवे महाप्रभु तंकर कर्मभूमि को तंकर कर्ममय क्षेत्र को सही आम गोटे ओडिया कथा अच्छी जे कर राजकार्य छाड़ पितृकार्य तेणु पितालय मात्रालय अर्थात मातृभूमि जन्मभूमि मोह को आमको त्याग करने को पड़ब ये हूँ कर्तव्य दाय कर्तव्य कर्म आगे सबु तुच्छ वर्तमान आज भगवान जो बाहुड़ी जीवे यही बाहुड़ा यात्रार परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करने मु मोर अनुज प्रतिम प्रताप त्रिपाठी महोदय को निवेदन करुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: नीलाद्रिनाथम जगतामधीशम चिदं स्वरूपं शरणीकनाथम श्रीनि

ब्रह्मोऽस्मि नित्यम्। श्रोता बंधु, महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर दिव्य श्रीक्षेत्र धामरे जो परम पावन धाम आज लीला लगी बाहुड़ा जात्रार लीला आपण माने श्रवण करुथिले आमर बरेण्य घोषक मानंक पाखरु क्षेत्रर महिमा सहित श्रीक्षेत्रर परिवेश सहित आपण मानकु से माने जोडुथिले। तेबे आमर एई बळगंडी छक निकटरे जो परिवेश बड़दाण्डर रहिछि आपण माने अभिभूत हेबे से परिवेश सहित मिसिले। प्रथमरे एई क्षेत्रर एई स्थानर जो विशेषता रहिछि जे कि भक्त सालबेग जे महाप्रभु को आकुल प्रार्थना करी कहिथिले आहे नील शैल प्रबल मत बारण मो आरत नलिनी बनकु कल दल। से महाप्रभु को जो प्रार्थना करिथिले आकुल निवेदन महाप्रभुंकर दिव्य नंदीघोष अटकी जाइथिला से कथा एई आमर केन्द्र आगरे भक्त सालबेगंकर समाधि पीठ बड़दाण्डरे एभली भक्त टीए सीए तांकर समाधि पीठ अवस्थित बड़ छता जो बलगंडीर आम सम्मुख भागरे छता मठ बलगंडी छता मठ ताहा गोटे धार्मिक अनुष्ठान टीए विराजमान करुछि एवं आम केन्द्र सम्मुख भागरे अनेक हजार हजार संख्यारे श्रद्धालु माने गोटे वर्णर मुंडरे सबु टोपी लगेइछन्ति कौनसी एक संस्था तांको प्रदान करिछन्ति आउ अन्न छत्र मध्य किछि श्रद्धालु दान करुछन्ति जल बंटन करा जाउछि आरक्षी बाहिनी सेमानंकर जत्न नेउछन्ति आउ अग्निशम विभाग सेमाने मध्य आम केन्द्र आगरे प्रस्तुत रहिछन्ति। महाप्रभुंक सेवारे समस्ते जणे जणे सेवक भावरे निजको अनुभव आणुछन्ति किछि छोट छोट दोकानी माने सेमाने विभिन्न प्रकार द्रव्य सबु बिक्री करुछन्ति कहीं रथ आसिले से माने आउ बसी पारिबे नाही नड़िया रहिछि एवं अनेक प्रकार खेलना सामग्री सबु धरी से माने रहिछन्ति आउ संकीर्तन मंडली तुहाकु तुहा जेपरी असरा परे असरा मेघ आसी जाए आकाशरे संकीर्तन मंडली माने वर्तमान आम केन्द्र दे महाप्रभुंकर से दिव्य आड़प मंडप आड़कु यात्रा करुछन्ति पुणि आमे अनुभव एटी दर्शन करुछु जे कि श्रीमंदिर पाखरु सिंहद्वार पाखरु भक्त मानंकर भिड़ धीरे धीरे जमी आसिलाणी समस्ते निजकु प्रस्तुत कलेणी महाप्रभुंकर सानिध्य पाइबापाई आपण माने सुनुथिले एई जो आरप मंडप को महाप्रभु यात्रा करुथिले एहा पूरा लेखा अछि वामदेव संहिता रे पूरा मह्यम कृतज्ञातु त्वया च पुरुषोत्तम गुंडीचा मंडपे राजन स्थास्यामि सप्तवासरम। ये सातटी दिन जो आड़प मंडपरे जन्म बेदी रहिबार जो सुख जो आनंद जो लीला से लीला हेउछि महाप्रभुंकर अनन्य से लीला नथिले आज हुए तो श्रीगुंडीचा यात्रार महिमा एते सुदूर प्रसारी होई परिनथंता तेणु माँ पाखकु जिबारे बा जन्मभूमि को पहुँचबारे ये जो बार्ता महाप्रभु आम ठाकुर आमको प्रदान करुछंती समग्र विश्व।

0: जो साल बेग थे कही तो भकत जीवन भकत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह तोर चक्र चिन्ह तेणु शंख चक्र चिन्ह देखापी प्रभुंकर यात्रा जहाँ आम प्रथम केन्द्र आम शुणुले जे महाप्रभु महाबाहूंर दुई पटे गोटे पटे शंख आउ गोटे पटे चक्र एवं जो राजा इंद्रदुम्न राणी गुंडीचा जहां नाम अनुसार ये यात्रार नाम होती गुंडीचा यात्रा। ये गुंडीचा यात्रा को जदि आप उच्चारण करेंगे यही गुंडीचा यात्रा आसी महाप्रभु को दर्शन करेंगे सत जन्म पाप आपण दूर हो सत जन्म पापरु मुक्त हवापाई भक्त मैंने धाई आसुचंदी माने स्वतस्फूर्त भाव जमी चुंबक लुहा को टाणे तेणु प्रभुंकर आकर्षण रे प्रभुंकर देदीप्यमान लीलारे आकर्षित ही भक्त मैंने धाई आसुचंदी जो श्रद्धार बाली कथा आलोचना करुथिले आमे से श्रद्धार बाली को लागिकिरी जो गुंडीचा मंडप जहाँ को आड़प मंडप से आड़प मंडप कौन से आड़प मंडप हूँ आटोप मंडप पट्टे निर्मित मंडप जत ख्रीय नवम शताब्दी सुवंशी राजा जोधाति केशरी महाप्रभु जगन्नाथ जो पाताल होते सोनपुर गोपाली ग्राम से शहे चौरास वर्ष कि शहे छयास वर्ष से पाताल जगन्नाथ को उद्धार कर नवकलेवर कई आणिकी प्रथमे पुरी रे प्रतिष्ठा करिचंदी कोठी प्रतिष्ठा करिचंदी ना ये गुंडीचा मंडप रे प्रतिष्ठा करिचंदी सेइति पई ए गुंडीचा मंडप कु आटप मंडप कहा जाए जहाँ महादलापांजी उल्लेख रही जजाति केशरी समय रु 38 हाथ उच्चर ए जो पटोल पटार निर्मित देउल पटार निर्मित मंडप से ही मंडप महाप्रभु को प्रथम रखा जा तार ना हूँ जनकपुरी जन्मस्थान जन्मवेदी किंतु श्रोता बंधु ता पूर्वर आउ गोटे देउल रही ना हूँ नृसिंह देउल नृसिंह मंदिर जहाँ को वर्तमान आम यज्ञ नृसिंह बोली कहू जो यज्ञ नृसिंह मूर्ति परिकल्पन आम कहे जे कोल लक्ष्मी मस्तक अनंत आमर जो टिके आगे आम आलोचना करुले जे लक्ष्मी रोषशाला जो रही श्रीमंदिर रोषे सब रोष करोसे करप मंडप लक्ष्मी रही कारण जो यज्ञनाथ यज्ञनारायण तर कोल लक्ष्मी मस्तक अनंत ये हूँ आदि नृसिंह एवं प्रथमे जजाति केशरी यही स्थापन कला क्षेत्र नाइची पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र अधिवासी हूँ प्रथमतः जे नृसिंह दशवतार भितर चतुर्थ अवतार हो नृसिंह अवतार जो नृसिंह को आदि नृसिंह भाव देखु आउ जड़े नृसिंह अच्छा वर्तमान जो शहे हाथ उच्चर देउल जो रही वर्तमान देउल दक्षिण पटरे जो मुक्त मंडप को लागिकी जो नृसिंह अच्छा से होती विदारण नृसिंह आदि नृसिंह तेनाली नृसिंह हूँ मूल सत्य युगर जो नृसिंह कथा कहला से अनुसार यही क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कह जाए यही कथार परवर्त धारा बरणी प्रदान करने मु प्रताप त्रिपाठी को नवेदन करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
1: पदात् पदात् श्रेष्ठतम क्रमात् परम पावन सिंधु तेरे तुजो ब्रह्मन राजते नील पर्वत से नील पर्वत रे नील कंदर रे महाप्रभुंकर दिव्य लीला सबुबले श्रद्धालु भक्तटीए वर्ष तमाम देखुवा बेले जो अवकाश मिली नवदिनात्मक यात्रा श्री गुंडीचा यात्रा से स्वतंत्र भाव देखापी तार ठाकुर को से धाई आसी काहीकि से जानी ये हूँ गोटे अवकाश जहाँ दुर्लभ आपण माने श्रवण कर नीलकंदर दर्शन आड़प मंडर पर दर्शन केते पुण्य प्रद केते स्वतंत्र रही आड़प मंडप दर्शन फल बा महाप्रभुंकर आशीर्वाद तेबे श्रोता बंधु

तेते प्रिय नुह नेयं स्वर्णमयी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। तेणु मोर जन्मभूमि लेखा जाइछि स्वयं महाप्रभु कहिछन्ति तस्या पुण्यतम स्थानं पृथिव्यां नेह विद्यते। तेणु पृथ्वी समग्र विश्वरे मो गुंडीचा मंडप ठारु पुण्यतम प्रिय स्थान आउ संसार रे किछि नाही।

ये विभिन्न अवस्था को सी प्राप्त हेउची जिए जेतिकी बाट गमन करि पारुची ता भितरे सेतिकी भाव सृष्टि हेउची आमर ए केन्द्र आगरे वर्तमान गहळ बढ़ी जाइची श्रीमंदिर आड़ भक्त मानकर आगमन आउ धीरे धीरे मेडिकल छक आड़ भक्तंकर जो गहळर जो व्यवस्था ताहा आम केन्द्र आगरे जमति मिलन स्थल परी ताहा केन्द्रीभूत हेउची भक्त माने निज निजर इच्छा अनुसार महाप्रभुंकर सानिध्य पाइबाकु चेष्टा करुछंती आउ एही कथा को भक्त कवि जयदेव महाप्रभुंकर सौंदर्यर वर्णना करिछंती आपण माने देखिबे जो शीत कमला कुच मंडल सेही स्तुति रे गोटे सुंदर स्तुति करिछि महाप्रभु केते सुंदर जगन्नाथ महाप्रभु अभिनव जलधर सुंदर ध्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे महाप्रभु एते सुंदर से सौंदर्य बसीभूत हो समस्ते आज आगमन करिछंती नहले एटी अन्य किछि कारण नाही महाप्रभु होउछंती दाता कौन दियंती कैवल्य अनेक दुखर भावना को मन भितर धारण कर भक्तटी अंटा भिड़ी आसी जाए मु जाउछि आज जणेबि कालिया को महाप्रभु जगन्नाथ को आज पर बड़ दांड में ठिया हो सी मोर सब कथा बुझे से दिन बंधु महांती कथा बुझी से दिन दासिया बाउरी कथा बुझी आई कथार दृढ़ता रखी भक्त मैंने आसी बड़दाण्ड को किंतु आश्चर्य हे आपण मैने भक्त सिना अनेक कथा भाविक आसी थाए ये बड़दाण्डर एत कुहक स्पर्श एत भावनात्मक स्पर्श रही भक्त सब भूली जाए ता निज कथा को एथिपाई जे महाप्रभु केतेबेले ना केतेबेले तार से दुख को हरण करनी हरि हरण करनी सी आ कौन दुख कथा मन पकेब खंडनाथ सर्व दुखानम अखंडानंद दानतः स्वभावादारु रूपम हि परम ब्रह्मा भिधीयते ये परम ब्रह्मा को पाखरु आउ सितार कौन आउ पाइबा को अछि तेणु यही सर्व रहस्यमय देवता महाप्रभु जगन्नाथंकर आज बाहुड़ा जात्रा रे आमे देखुचे आम केन्द्र आगरे जो भक्त मानंकर द्वारा किछि द्रव्य पड़ जाइछि कागज हेउ पत्र हेउ से सब को उठाई देउछंती स्वेच्छासेवी माने परिमल विभाग से माने जो कथा आसी श्रीक्षेत्र को सेमान कार्यरे लागी तेणु ये बड़दाण्डर पवित्रता को समस्ते अंगीकार करिछंती हृदय बुझिछंती मनरे हृदय धारण करिछंती पवित्रता को काहिंकि ना यही जगार पहुँचवा हेउछि भक्तर गोटे बड़ आस्था एवं बहुत बड़ उपलब्धि यही स्थान रे पहुँची और आपण माने मध्य पहुँचिछंती जहाँ मानसिक स्तर रे जो कथा आमर मानस उपचार पूजन करा जाए देवादेवी को आपण माने जानती द्रव्यर बिना द्रव्यरे मनरे भगवान को एकाग्रतार सहित आसन स्वागत पाद्य अर्घ्य सब अर्पण करा जाए तेणु यही मानसिक पूजा दिने चैतन्य देव करिथिले जगमोहन रे बसी यही मानसिक पूजा को दिने बाढ़ी देइथिले अनेक भक्त माने ते माने मानसिक पूजा करती तेणु यही मनर पूजा को आज भक्त प्रदान करुछि बड़दाण्ड रे विभिन्न माध्यम रे वैदेशिक भक्त मानंकर मध्य समागम होइछि आम केन्द्र आगरे से माने भावुछंती जे कौन आमे आसी देखिलु इते सुंदर कथा जहाँ से माने निज को अभिभूत आश्चर्यान्वित करुछंती कौन आउ पाइथंतु आमे एठा को आसी तेणु श्रद्धालु भक्त मानंकर ये जो उत्सव रे समागम एहा ही भक्त भगवान कर मिलन को यह स्वतंत्र इव द्विज तेणु अहं भक्त पराधीन महाप्रभु कहउछंती मु भक्त पाखरे पराधीन भक्त कहउछि महाप्रभु मु आपणंक डोरी रे आकर्षित होई आपणंक ऐश्वर्य रे आपणंकर

0: पुरीर बड़दाण्ड केवल गोटे रास्ता नुहे
1: एहा भक्त ओ भगवान को जोड़ीबार पथ
0: एहि पथरे जाति नाही धर्म नाही परिचय नाही
1: अछि केवल मनीष पणिया
0: आउ जते बेले कहा पाई साहाज्य रो हाथ बढ़े
1: ताहा ही हुए महाप्रभु का प्रति श्रेष्ठ समर्पण
0: सड़क दुर्घटनाग्रस्त जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनिछंती पीएम राहत योजना
1: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखानी सात दिन जाए देढ़ लक्ष टंका पर्यंत चिकित्सा खर्च सरकार बहन करती
0: ओडिशा सातशह अठानबे घर डाक्तरखाना योजना पंजीकृत होती
1: समस्त सरकारी डाक्तरखानी सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा
0: आसंतु मानविकतार एही संकल्प सहभागी होई आमे भी बढ़ाइबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त सहायतार हाथ
1: पवित्र घोष यात्रार हार्दिक शुभेच्छा
0: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा द्वारा जनहित जारी
2: राष्ट्रीय प्रगति भीति नारी को शक्ति विकसित भारत में समृद्ध ओडिशा पाई महिला सशक्तिकरण को केन्द्र और राज्य सरकार विशेष गुरुत्व महिला सशक्तिकरण जुगांतकारी योजना सुभद्रे महिला मिली आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन योग्य हिताधिकारी सहायता असुविधा थिबा महिला तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नंबर 181 असहाय महिला शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि मध्यम गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दिजाऊ प्राधान्य प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़ा आम भाषा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशु सर्वांगीन उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार
3: जय जगन्नाथ पवित्र रथयात्रा अवसर में समस्त श्रद्धालु और भक्तवृंद को हार्दिक शुभेच्छा आपणक सुरक्षा और सुस्थता आमर प्रतिबद्धता खोला बासी और माछी बसुवा खाद्य खातु ना तटका खाद्य खातु विशुद्ध पानी जल व्यवहार करतु दीर्घ समय धरिकी खरारे रुहंतु ना धला टोपी हाल्का पोशाक किंवा ओदा कपड़ा व्यवहार करतु यथेष्ट परिमाण में पानी किंवा ओआरएस पानी पियंतु छेप खंकार अलिया आवर्जना को एणे तेणे न पकाई डस्टबिन में पकातु पाइखाना व्यवहार करतु शौच पर साबुन में हाथ धुंतु राति रहणी करुले मशारी किंवा मशा निवारक व्यवहार करतु निशा सेवन ठु दूरे रुहंतु मुंड बुलेवा किंवा असुस्थ अनुभव कले विलंब नक निकटस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी किंवा स्वास्थ्य शिविर परामर्श नियंतु वयस्क व्यक्ति शिशु गर्भवती महिला और भिन्नक्षम जत्न नियंतु सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु
4: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा
5: पवित्र रथयात्रे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रही एवर्ष जात्री मानक सुविधा पाई ओडिशार विभिन्न प्रांतरु ओ पड़ोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचल घोषणा करा जायछि एथिसहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र जात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानकरे जात्री मानक सुरक्षा पाई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनक सेवारे
6: आमे देखुचु नाकचणा द्वार सम्मुख भागरे लोकारण्य अर्थात वर्तमान घंटुआ माने सेठी पहुँची गले नृत्यकारी माने सेठी पहुँची गले एवं आमे जानी पारुचु या परे होउचंती पहंडी हेबे सेई बलभद्र भगवान दुर्भ्याम शोभित लांगलम समुसलं कादंबरी चंचलं रत्नाढ्यं वरकुंडलं भुजबलई राक्रांत भूमंडलं वज्राभा मलचारु गंड जुगलं नागेन्द्र चूड़ोज्वलं संग्रामे चपलं शशांक धवलं श्री कामपालं भजे आजि कामपाल विजय करिवे आउ अल्प समय परे आमे देखिबा कामपाल विजय करिवे एई जो घंटुआ माने वर्तमान घंट बजाऊ से माने श्री सुदर्शन भगवान को दर्पदलन रथरे आज छाड़करी जाती श्री सुदर्शन होती समग्र विघ्नर उच्चारण करने से आसी जेहेतु प्रभु माने विजय करिवे चक्र विराजे दक्ष करे सूर्य की उदित अंबरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु दक्ष कर डाहाण कर भगवान सुदर्शन विजय करी एवं सी होती सूर्य कोटि समप्रभ से कहुए सूर्य की उदित अंबरे सत्य कौन अंबर अर्थात नभोदय नभोमंडल सूर्य उदय हेले कि यही भाव में विजय कर

जो कृषि करी आमे अंतर भितर जो भाव उत्पादन करिबा सेटा मध्ये गोटे कृषि बोली कहा जिवो तेणु से कृषि कर्म करिबा पई अंतर भितर हृदय भितर कृषि कर्म करी आम भितर थिबा समस्त सद्गुण समस्त आध्यात्मिक भाव ताकु बीज भाव अंकुरित करिबा पई जो क्षेत्र प्रस्तुति दरकार से क्षेत्र प्रस्तुत करिबा पई फलायुध बड़ ठाकुर बलभद्र प्रथमे आसिले एवं से क्षेत्र प्रस्तुत करदेला परे माँ सुभद्रा होउचंती शक्तिमयी तेणु माँ सुभद्रा जेहेतु शक्तिमयी आपण जानिचंती श्री श्री चंडी रे कहाइछि जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः तेणु माँ सुभद्रा जेहेतु होउचंती शक्ति समग्र जगतर शक्तिर आधार तेणु शक्ति आसिकरी तीन रथ को परिक्रमा कले आपण देखुचंती चक्रराज सुदर्शन आसिले से परिक्रमा कले एवं माँ सुभद्रा मध्य आसिले से परिक्रमा कले परिक्रमा करिवार अर्थ होची देवी शक्ति रूप से जिते सबू रथ को परिक्रमा करती तीनोटी रथ को परिक्रमा करिवार प्रच्छन्न तार प्रतीक होची समग्र विश्व को सी परिक्रमा कले एवं समग्र विश्व को परिक्रमा करिवार द्वारा समस्त विश्व शक्तिमय हला एवं से शक्तिंकर प्रभाव रे समस्त अपशक्ति अपसारित हले समस्त अपशक्ति अपसारित हला परे शक्तिर जेतेबेले स्फुरण हब समस्त जगत चल चंचल हब समस्त जगत शक्तिमय हब सेइतिपाई माँ सुभद्रा आसिकरी तीन रथ को परिक्रमा करी सते जेबेले विश्व ब्रह्मांड को से परिक्रमा कले से परिक्रमा शेष करी तांकर दर्पदलन रथ रे से आरूढ़ हले तेणु एही तीन देवतांकर वर्तमान पहंडी सरिबा परे ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पहंडी वर्तमान आरंभ हो सारलाणी ए जो पाचेरी एवं नाकचणा द्वार ए मध्यवर्ती पाट देकर आम देखुचु जे महाप्रभुंकर टाहिया वर्तमान हलिवा को आरंभ कलाणी ये हूँ प्रकृष्ट समय जेतेबेले विश्व ब्रह्मांडर नायक कोटि कैवल्यनाथ सी जेतेबेले आसंती बड़ दांड को सेतेबेले समग्र जगत चकित होकर अनई थाए समग्र जगत भितर उत्कंठा अपूर्व उत्साह एवं उन्मादना थाए तेणु से उन्मादना को प्रशमित करने समस्त जगत को परितृप्त करने समस्त जगत को पावन करने समस्त जगत को उद्धार करने महाप्रभु आसती तेणु क्षेत्र प्रस्तुत समग्र जगत चलचंचल समग्र जगत शक्तिमय अपशक्ति माने अपसारित यही गोटे मुहूर्त जिते उपगत हो श्रीक्षेत्र वर्तमान महाप्रभु विजय करुचंती बड़दाण्ड को एवं यही जो बड़दाण्ड को विजय करुचंती नाकछणा द्वार देकर खूब अल्प समय भितर से आसिक पहुँची जी आम बाहर एवं घंटुआ मैंने उपस्थित होकर अपेक्षा कर महाप्रभु को पाछटी आने आपड़ जानती महाप्रभु हूँ स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म निजे स्व इच्छा ताकि जदिओ आम विग्रह भाव में निर्माण करूँ एवं दारु रूप देचु से दारु रूपटी तांकर निज इच्छा से ग्रहण करचंती निज इच्छा रे काहे कि ग्रहण करचंती ना दारु रूप हवा द्वारा से आम पाई सुलभ हेले दारु रूप हवा द्वारा तांकर यात्रा हेई पारिला दारु रूप हवा द्वारा से बड़ दांड को आसी पारिले भक्त मानंकु से दर्शन दे पारिले एवं दारु रूप हवा द्वारा तांकु मानुषी लीला करबाकु सहज हला तणु अनेक गुडे विचार अनेक गुडिए तत्व समाहित करबा पई ताको समन्वित करबा पई केवल दारू विग्रह ही एकमात्र बाट तेणु महाप्रभु निज इच्छा रे यही दार बोतल धारण करी वर्तमान जगत को उद्धार करने आसुचंदे स्वयं परमात्मा परम ब्रह्मंकर जो लक्षण सब वेद वेदांत रे कहाई से समस्त लक्षण महाप्रभु विग्रह रे आमे देखुचु महाप्रभु आसंतु जेतेबेले बनाटी बुलिलाणी एवं टाहिया दिशिलाणी महाप्रभु आउ कि समय पर आसिबे तेणु महाप्रभु जेतेबेले रथ परिक्रमा करिवे परिक्रमा तो करिवे नाही तांकर रथ को जेतेबेले तांकर आमर सामना पटरी जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठान अच्छी से ही बाट देक सी ते नंदीघोष रथ को जीवे से महाप्रभु महिमा एवं तत्व आम अवश्य आपण को कहू वर्तमान आमर देखा जाऊँगी जे समग्र बड़दाण्ड माने जी बाट आम देखिपु सरधा बालूर आरंभ कर आमर द्वितीय केन्द्र या बड़गंडी पर्यत प्राय आमको देखा जा एवं से जो देखा जाऊँ आम केवल मुंडमाल देखु किसी देखा आमको सकाले सकाले सरधावाली देखा जाऊला किसी रास्ता आम देखिपु कि बर्तमान जिते मुंड नईक एपट सेपट चाहिए केवल मुंडमाल छड़ा आमको आउ किसी दृश्यमान होना तेणु यही भावतु आपत बर्तमान बड़दाण्डर अवस्था कौन एवं यह सब बेले हुए जिते बजपति महाराजा छेरा पहरा करने
ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଉପଗତ ହେଲାଣି ଏବଂ ମେହେନା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପାଖରେ ମେହେନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ।

0: करई कर्ण नाही सबु सुणे चक्षु नाही तार तिनि पुर दिशे जिह्वा नाही स्वादु मणे। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज केते सुंदर भाव रे एकटारी कहिले पाद नाही से जे गमन करई। आपण देखुनाहांती वर्तमान आमे देखुथिलु ए जो वर्तमान गोमुट रहिथिला नाकचणा द्वार सिठु अतिक्रम करी केड़े क्षिप्र गति रे से वर्तमान पळै आसिलेनी राधा बल्लभ मठ रे मठर जो पार्श्ववर्ती अर्थात राधावल्लभ मठ एवं श्री नंदीघोष यारी मध्यवर्ती जो मार्ग से मार्ग पाखरे से अच्छा एवं सेठी दंडायमान होता नंदीघोष रथ उपरे आउ अल्प समय परे से विराजमान करिजिबे केते लोक चाहिकरि बसिछन्ति महाप्रभु को तांकर दुर्भाग्य कथा टिके कहिबा पई महाप्रभु कहिछन्ति अरे मु त सेठी पई आसी केते कहुछु मते मते काही एते कहुछु मु पूरा अंतर्ज्यामी मु कण तो अंतर रे नाही तू केवल मते मन दे मजेव मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय तू मते मन दे दे तू मते बुद्धि दे दे आउ सबु भार मु तोर बहन करिवि तेणु मो तू भावुचि कि मोर पाद नाही बोले मु चाली पारु नै मु चाले पाद नाही से जे गमन करई कर्ण नाही सबु सुणे। तमे कहिव प्रभु आपणकर त कर्ण नाही मु जते कहुचि सुणुचन्ति केमिति ना रे मु मु एमिति एक वस्तु मु एमिति एक वस्तु सर्वेन्द्रियाणी सर्वेन्द्रिय वृत्तिमंती एमती कौ देवता अच्छे आपण कहले मान जस्येन्द्रियाणी जहाँ प्रत्येक इंद्रिय सबु इंद्रियर काम कै हस्तोपि पश्यति हाथी हाथ देखे आपण भावे नहीं ये गोटे किंभूत किमाकार प्रभु जार सर्वेन्द्रियाणी जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती जार इंद्रिय नथिले मध्य जे कौनसी अंग तांकर से सबु अंगर काम करिव हस्तोपि पश्यति हाथ भी देखे तांकर शरीरटी कान नथिले मध्य शुणे पाद नथिले मध्य से गमन करंती।
1: डॉक्टर डॉक्टर दास
0: आज्ञा
1: अमर अति बड़ी जगन्नाथ दास
0: हाँ
1: तांकर गोटे भजन अछि
0: आज्ञा
1: से भजनटी महाप्रभुंकर सबु कथा को कहि दैछि नवाक्षरी रे
0: आज्ञा
1: सेटा खाली गाइले तो समय लागिव
0: हां खाली कहि दियो
1: श्रोता मान को पई हम ठीके कहि दबा
0: हां
1: ते नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ लोकंकर नाथ
0: हां
1: नमस्ते प्रभु वासुदेव भक्त जनंक बांधव नमस्ते प्रभु ऋषिकेश भक्त जनंक विश्वास नमस्ते प्रभु विश्वरूपी सकल हृदय अछु व्यापी तू सृष्टि स्थिति लय करु आवर गर्भरे संघरु अशेष कोटि वसुंधरी तोहरी गर्भे छन्ति पुरी चौदह भुवने जा किणा ए सर्व तोहर रचना तु ब्रह्मा रुद्र विष्णु तुहि तोबिनु अन्य गति नाही सृष्टि तोहर खेल घर अशेष माया तो आवर तोहर निश्वास मरुत देवे होइले तहु जात आपण शुणु थांतु तुहिटी अग्नि देव इंद्र नयनु जात सूर्य चंद्र तो नयनरु सूर्य चंद्र जात होइछन्ति भुजरु अनंत मूरती कंठरु जात सरस्वती सदा चंचल निद्रा नाही एरूपे शून्य सदा चंचल निद्रा नाही एरूपे शून्य अछु रही अशेष तोहर महिमा केजाणी पारे गुण सीमा तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप क्षय नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई रोग शोक आदि आरत भंजन तो बाना आतंग काले वज्र सेन्हा होइलु दश अवतार नासिलु अवनिर भार दुष्ट निवारी संत पालु तुनाथ परम दयालु तु अटु दरिद्रंकर धन तोपदे रहु मोर मन सती युवतींकर मने निजर स्वामी थांती जेने सही प्रकारे मोर मन तोपदे रहु भगवान कहई दास जगन्नाथ कहई जगन्नाथ दास कमल चरण को आस आपण जहा जहा कहिले वेद वेदांतर सबु कथा गुडाक जगन्नाथ दास नवाक्षरी वृत्तरे केडे सरल भावरे लिखि दैछन्
0: सेहिते पई गीतारे कहिछन्ति प्रभु कहिले अरे मु किछि मागुनी मदेव मनाधस्व।

0: मई बुद्धिंग निवेश मत मन दे कथा को शेष से कहले सती नारी ता पति पाखे जेमिति मती को बा मन को निश्चल कर रखे हे प्रभु आपण पाखे मो मनटा अत्यंत निश्चल हो रू तेणु मो मन
1: तेणु तेणु एवं श्रोता बंधु माने टिके मने कर मने पकांतु जदि पति हेतिबे मने करंतु नहले पत्नी हेतिले भी मने करंतु पत्नी जेमिति पति कथा सब बेले विचार करे जदि से सच्चा पत्नी हेथाय सत पतिव्रता हेथाय पति पति प्राणा हेथाय से जेमिति सब बेले पति कथा भावे एवं पति जदि प्रकृत रे पत्नी प्राणा हेथाय से जेमिति निजर पत्नी कथा सब बेले भावे सेई बेले भगवान कहउचंती तू पति पत्नी को भली पवित्र भावरे जदि मो प्रति मन लगेबु मु तोर सकल दुख को दूर कर देबु।
0: भगवान केते बड़ा आश्वस्ति करचंती अनन्यास चिंतयंतो मां
2: जे जना पर्जुपासते तेसा नित्य विदुक्ता नाम योग खेमं महाम्यहम।
0: जे को अन्य पतिव्रता नारी कौन करे तार मन टे तार पति टे ता मन को गोटे पति पाखे जेमि से निश्चल कर रखी दिए सेमती भगवान कहते जो व्यक्ति निजर मन को अन्य कौन सी जगह न दे अनन्यास चिंतयंतु मांग कौन सी जगह न दे मोते केवल प्रदान करी थाए मते चिंता करू थाए मु तार दीटा कथा बहन करे ते सांग नित्याभिजुक्ता नाम नित्य अभिजुक्त से ही व्यक्ति मान को मोर जोग क्षेम बहाम्यहम। कौन आया अर्थ जोग माने कौन क्षम माने कौन जोग कहिले अप्राप्तस्य प्राप्ति ही जहाँ तो जीवन रे पाइनु मु तते प्रदान करी आउ क्षम माने कौन प्राप्तस्य रक्षण जहाँ तते मु दुर्लभ जिनिष देली ताकू सुरक्षा करी जन को 5 कोटी टंका देई देई कि आमे निश्चिंत रे बसी परिवानी जदि टिके बा माने लीक ही गला तेबे निश्चित भाव ता मुंडटी कटिजीव तेणु भगवान कहले मो दुर्लभ वस्तु दिए एवं ताकू सुरक्षार भार मध्य मु निए
1: जो योगक्षेम कथा कहले अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति एवं प्राप्त वस्तुर रक्षण तेणु आमको भगवान बहुत कथा देले मध्य आमे ताकू धारण करिबा आमे ताकू रक्षा करिबा निज भितरे सबुबेले सेई भावना रे रहिबा सेईटा अमर हुए नै कारण आज पवित्र भावना आसूची काली से भावना चली जाऊँगी तेणु भगवान कहते तू जदि अनन्य चित्त होकर मो सहित रहीबु ताल ते मु अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति करेबी एवं से प्राप्त वस्तुटी को तू कि धारण कर रखिबु ते शक्ति ते देवी
0: देवी जहाँफल तू निश्चिंत होबु के बड़ कथा तेणु आम को निश्चिंत करदे निजे कहते ये सब सत्वे एवं निजे आसुचंती निजे आसिकरी कौन करचंती कहले अरे मोर केतोटा यात्रा रे तू आ दोले छ दोल गोविंदन चापे तू मधुसूदनं रथे तू बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जदि दोल यात्रा रे मु दोल गोविंद होइकरी जेतेबेले दोल बेदी रे झुलुथिबि सेतिबेले मते टिके दर्शन करिबु आउ चापे छ मधुसूदनं जेतेबेले चाप होउथिब चंदन यात्रा होउथिब मु मधुसूदन होकरी बसिथिबी मोर उभय पटरे श्रीदेवी भूदेवी थिबे मोर आगरे आउ गोटे चापरे रामकृष्ण थिबे पंचमहादेव थिबे चापरे आमे बुलुथिलु एही बेळेरे मधुसूदन रूपे मते जदि तू दर्शन करिबु मुक्ति लाभ करिबु। आउ गोटे कथा रथे तू बामनम दृष्ट्वा जेतेबेळे रथयात्रा होउछि प्रति वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि आरंभ कर दशमी तिथि पर्यंत जो नवदिनात्मक जो यात्रा होची से यात्रा रे जत बोले मु बसिथिबी बामन होइकिरी आषाढ़े बामन चैव आषाढ़ मास रे मु होउची बामन आपण माने जानंती 12 मास जाक महाप्रभुंकर भिन्न भिन्न नाम रहिची सेथिरु आषाढ़ मासर नाम होउची बामन तेणु बामन रूपी मते जदि तू रथरे दर्शन करिबु मते मुक्ति लाभ करिबु केते आश्वासना एते सबु सत्वे आमे संसार रे एते व्यापी करी रहिचे ସଂସାରକୁ ନିଜର ବୋଲିକିରି ମନେ କରିଛେ ଆଉ ଭଗବାନ।

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुह बर यह हूँ लक्ष लक्ष श्रद्धालु आस्था विश्वास और भक्ति रे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यही पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मान सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्त दायित्व से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़ो जमीक तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानी जल व्यवहार करतु। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य कृत्रिम रंग दिया खाद्य बासी और दुर्गंध होता खाद्य माछि बसुवा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदो खातु ना। खाद्य खावा पूर्व एवं तथा शौच हवा पर निज हाथ को साबुन ने भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतारू रक्षा पाया आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पिंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रुहतु। अलिया आवर्जना तथा बड़का खाद्य एणे तेणे न पक डस्टबिन व्यवहार कर। जरूरीकालीन सहायता पूरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752221175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा द्वारा जनहित रे जारी।
2: जय जगन्नाथ।
3: जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आम ये विज्ञापन विरती गला
2: आज्ञा आज्ञा
3: ता पूर्व आलोचना करथिले श्रद्धा और विश्वास।
2: हाँ।
3: श्रद्धा विश्वास माने कौन ना जो शास्त्र मान कथा आम आलोचना करुचु से शास्त्र मान विश्वास करवा कहीं विश्वास करवा किए प्रश्न भी करें कहीं विश्वास करवा ना विश्वास करवाई जे साधु संत महापुरुष माने तांकर तपस्या एवं योग बल रे ज्ञान बल रे जहाँ उपलब्धि करिसेंति से ज्ञान आमको देइछेंति आमे से भली तपस्या करि परिबानी आमर से भली ज्ञान नाही तेणु जो ज्ञान आमको परंपरा सूत्र रे मिलिछि से ज्ञान को आमको अवश्य विश्वास करिबा को हबो। एटा हला कथा
2: संत तुलसी कहिले
3: आज्ञा
2: बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहीन राम राम कृपा बिनु सप नहीं हूँ लोगन लहई विश्राम
3: बात
2: विश्वास भगति नहीं
3: ये विश्वास टाक आमको रखा को।
2: हाँ।
3: द्वितीय कथा है आउ गोटे कथा है जी ए सृष्टि को रचना कर सृष्टि को पालन कर सृष्टि को संहार करे तार प्रतीक होती तार स्वयं विग्रह होती परमात्मा स्वयं जगन्नाथ
2: जगन्नाथ महाप्रभु
3: तेणु यू विश्वास करने को
2: विश्वास
3: एवं ये जगन्नाथ महाप्रभु आप कहे सी तो गड़कुणिया आसिले कि ना अमुक पीठर आसिले सी तो निम्बगछर दारू सी केमी परमात्मा परम ब्रह्म होते सी केमी जगतटा को पालन करेंगे एमती अबांतर प्रश्न कले तार किसी उत्तर ना सी होते स्वयं दारव तनु बोली कहुई एवं तांकु आमे विश्वास करके आराधना करुचे उपासना करुचे एवं
2: विश्वास मिलई हरि तर्के बहुदूर
3: ये है गोटे कथा। द्वितीय कथा है जी महाप्रभु जी रथ उपर बस

0: आम भितर ये जो तफात आम जाचे जे सामान्य मत पशुधीर नारायण आहार निद्रा भय मैथुन ये जो चारिटा जिनस पशु आम मान भितर एकता रही मात्र समता रही मात्र आम भितर जो दिव्य गुण हूँ
1: अच्छा त्रिपाठी महाशय
2: डॉक्टर
1: कानून को महाशय आपण मते सुनि परचंदी
2: आमे समाज रे निश्चित भाव रे जणे जणे भलो मनीष बा एही ज्ञान प्रदान करबा पई महाप्रभु एही प्रकार रो विचार रखी चंदी एही प्रकार रो वार्ता रखी चंदी एही प्रकार रो भाव रखी चंदी एवं आमे आशा करबा जे प्रकृत रे महाप्रभु को रे विश्व प्रसिद्ध आज बाहुडा यात्रा आमे देखुचु अनुभव करुचु
0: प्रथम केन्द्र केन्द्र सहित आमर जोगाजोग रखुचु
1: हाँ मते सुनी पारुचंदी डॉक्टर त्रिपाठी
2: हाँ हाँ कोंतु कोंतु आज्ञा सुबुची
1: हाँ एठी तीन रथ रे ठाकुर माने आरुडा होइगला परे वर्तमान चारमाळ तळु सबु लोकंकु बाहर कर दिया जाउची आरक्षी बाहिनी माने बहुत लोक थिले चारमाळ तळे तेणु तांकु निजे पूरी पुलिस एसपी निजे तत्वावधान रे समस्त को बाहर करुचंती परवर्ती कार्यक्रम गजपति महाराजांकर छेरा पहरा हबो किछि सूचना अछि कि सेपटु
2: नै आसी नांती गजपति महाराज आसी नांती किंतु आ अल्प समय भितर आसीबे बोली आमे भाबुचु चिंता करुचु एवं आगुरु तामजान जाइकिरी सेई पहुंची जाइछि बड़ संकट रे पहुंची जाइछि तेणु खबर पाइला परे गजपति महाराज कार रे आसीबे बड़ संकट पाखुरु जिबे आपणकर तामजान रे सेई सरदा बाली गुंडीचा मंदिर सम्मुखस्थ सेई रथ निकटकु
1: अच्छा सेपटे गहली केमती अछि
2: बहुत बहुत गहली अछि आज्ञा आपणकर श्रीमंदिर पाखुरु धीरे धीरे एत बढ़ी आपण न देखिले विश्वास
1: करपटे श्रीमंदिर आड़ को बाट चाहते केमती जना जा
2: बहुत गहली आज्ञा केवल भाव समुद्र
1: अच्छा
2: आउ
1: भाव समुद्र मुंडमाल
2: कला धला नाली हलदी विभिन्न रंगर पोशाक मंडित हो सरदा बाली रु जीवा आसवा कर जीवा आसवा चली
1: आमर अपेक्षा रही वो गजपति महाराजा केत आसवे एवं गजपति महाराजा आसिले परवर्ती कार्यक्रम वर्तमान अच्छी वर्तमान सिंधुक सबु आसिक रथ मान रही तापरे रामकृष्ण मदन मोहन एम समस्ते रथ को विजय हे तेणु विजय है गजपति महाराजा छेरापरा कर आसवे वर्तमान अढ़ेटा है भावुचु आउ अधघंटा घंटे भितरे सब कार्य समापन हम चारिटा समय धार्य हो रथ टाणापी तेणु रथ टाणापी चारिटा भितरे ये सब कार्य समाहित होकर धार्य समय रथ जात्रा हो प्रकार गोटे आशा आसुचि मनरे आउ कौन कहिबे सेपटु कहन
2: निश्चित आज्ञा निश्चित नाही भल लागिला आज सुंदर भाव रे ये कार्यक्रम टी आपण जो भली भाव रे आज पहंडी विषय जो कहिले बहुत भल लागिला
0: वर्तमान आमे देखि पारुचे जो आरक्षी बाहिनी माने तांकर साज सजा जो दौड़ी आदि करण करिबा पई नै करि जाउचंती एथिरु आमे स्पष्ट अनुमान करि पारुचु जे गजपति महाराज आउ मात्र पांच दस मिनिट भितर आम केन्द्र आग दे जिबे ये कथा आमे अनुभव करिपारुचु आउ सेतिपई प्रस्तुति चली तेबे श्रद्धालु मानंकर जो गहली अति मात्रा रे बढ़ी बढ़ी चली तेणु जी जो प्रकार कर्तव्य सब लगी किए भोग किणुंट किए दर्शन पाई विभिन्न प्रकार व्यवस्था को संकीर्तन मध्यम महाप्रभु आशीर्वाद ने
1: प्रताप बाबू
0: वर्तमान
1: गहली तो हम रथ जात्रा रे आउ गहली हमने के कौटी गहली हम से गहली हो कि जायास ना किंतु आदि जहाँ पाग अच्छी एवं पापागर व्यवस्था जहाँ पवन जमती बहुची उत्ताप जमती अति बेसी ना आउ तारी भितर लोक

0: करिबा पई पूर्वरु दिया जाउथिबा सहायता राशि 10,000 टंका परिवर्ते 12,000 टंका प्रदान करिबा पई सरकार घोषणा करिछंती। एही अर्थराशि कु हिताधिकारी माने निजे ओ शिशुर स्वास्थ्य एवं पुष्टिर उन्नति निमन्ते विनियोग करिथांती। सरकारक निष्पत्ति अनुजाई वर्धित सुविधा 1 एप्रिल 2025 रु लागू करा जायछि।
1: एही योजना अधीनरे मिलुथबा सुविधा गुडी कहेउछि कन्या संतान जन्म क्षेत्ररे हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पई 12,000 टंका पाइबे।
0: पुत्र संतान जन्म क्षेत्र हिताधिकारी माने प्रथम एवं द्वितीय गर्भधारण पाई 10,000 टंका पाइबे।
1: विशेष भाबे अनुन्नत जनजाति समुदाय संप्रदायर महिला मानंकु तृतीय एवं परवर्ती जे कोनोसी गर्भधारण पाई कन्या संतान क्षेत्र रे 12,000 टंका एवं पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान करा जिवार व्यवस्था करा जायछि।
0: एही योजना विषय रे अधिक सूचना पाइबा पाई आपनको निकटस्थ अंगनवाड़ी केन्द्र रे जोगाजोग करंतु।
1: अधिक सूचना जानिबा पाई महिला ओ शिशु विकास विभाग रो वेबसाइट wcd.odisha.gov.in रे लॉगिन करंतु। महिला ओ शिशु विकास विभाग द्वारा जनहित रे जारी।
2: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बलगंडी छक देई वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्नाटक कलबर्गेश्वर वर्तमान जाउचंदी पुलिस एस्कॉर्ट रे एवं श्रीनगर तंगरा अधिष्ठात्री देवी कनक दुर्गा को प्रणाम करी तंकर आशीर्वाद नै बड़दांड रे जाउचंदी बलगंडी छक अतिक्रम करी आगकु गलेनी। लोक माने दुई पटरे रहिकिरी तंकु प्रणाम करूचंदी, भक्ति नैवेद्य अर्पण करूचंदी। आपण होउचंदी ठाकुर राजा, आपण आमर आद्य सेवक, आपणकर कृपा आशीर्वाद ए राज्य उपर रहू, ए अंचल उपर रहू। आपण एमती आमर सेवा करी चालंतु। हे महाबाहु, तमर कृपा एमती आम उपरे रहिताउ एवं बड़ संक पाखरे पहुंचला परे सेइटु गजपति महाराज मेहनारे बसिकिरी जिबे सरदा बाली पर्यंत गुंडीचा मंदिर पर्यंत यार परवर्ती धारा विवरणी प्रदान करिबा पई मो प्रताप चंद्र त्रिपाठी महोदय को निवेदन करी। जय जगन्नाथ।
3: पतितानां पतितोहं त्वमेव पापहारकः पावन पुरुष देही निश्चला भक्ति मे विभो। महाप्रभु निकट को जेतेबेले गजपति महाराजंकर आगमन हेउछि उभय पार्श्वरे नर नारायण माने सब बड़दाण्डर उभय पार्श्वरे से माने प्रणाम निवेदन पूर्वक सम्मान जनाउछंती बड़ ठाकुरंकर सेवा को आपण आद्य सेवक होई सुंदर भावरे संपन्न करिवे ए आशा भरोसा विश्वास रखुचु आमे आपणको माध्यमरे आमर प्रणाम मध्य महाप्रभु को पठाइ दउछु। कारण आपण महाप्रभुंकर सेई श्रीअंग निकटरे ठिया होई दिव्य राजनीति सेवा को वंदापना को अर्पण करिवे छेरा परा परि सेवा। श्रोता बंधु आपण माने जानंती ये हेउचंती ए राजा हेउचंती आम समाज पई आम विश्व दरबार पई एक सुंदर वार्तार कथा आपण माने सुनुथिले आमर घोषक माने आपणकु श्रवण कराउथिले। तेणु ये जो कथा रही ते राजा शब्दर जो महात्म्य रही राजा सेतिकी बेले तांकु कुहा जीवो जमती गंगाधर मेहर कहिचंती तांकर तपस्विनी काव्य रे हृदय पछे जले विद्युत अनले जल दाने घन बाध्य सुख तेजी राजा तोषिबे परजा तेबे तो परमाराध्य। राजा सेतिकी बेले प्रिय पात्र हेबे प्रजा मानंकर निजर सुख को से पर करि दियंती, निजर आनंद को से पर करि दियंती, प्रजार सुख को से गुरुत्व दियंती। जेपरी मेघ आकाशरु बिजुलीर घन घन बिजुलीर जेतेबेले शब्द प्रचंड शब्द हुए घड़ घड़ी मारे सेही समय रे जल दान करे किए मेघ आकाशरु वृष्टि हुए सेही परि कष्ट सही राजा प्रजाकु आनंद प्रदान करती। गोटे कथा को आपण मान आगे आम रखुचु इति अवसर रे आम केन्द्र आगरे जड़े परलोक हो जाइथिबा जड़े श्रद्धालु आज तांकर महाभाग्य ए बड़दांडरे से जाउछंती आमर ए केन्द्र आगरे संकीर्तन आगे आगे चली कुटुंब माने तांकु नहीं करी जाउछंती स्वर्ग द्वार को। ये होउछि सेही बड़दांड जेउठी जन्म जेउठी मृत्यु जेउठी लीला खेला जेउठी तो शिशु कैशोर एवं चौवन बार्धक्य शेषरे विदाय एइठी आरंभ हुए जीवनर आनंद ଏଇଠି ପୁଣି ବିଲୟ ହେଇ

0: दुर्लभ दर्शन ये एक एभली दर्शन याकु अनुभव कले ही भक्त माने जानी परिबे
1: आपण जानंती जगन्नाथ महाप्रभु गोटे मनीष परी आउ गोटे उदाहरण आमे देई परिबा ए जो टिके समय पूर्वर आमर श्रोता बंधु को आमे सूचना रहितलु सिंधुक गला तीन रथ ऊपर को तीनोटी सिंधुक से सिंधुक रे कोण महाप्रभुंकर पाट वस्त्र विभिन्न अलंकार साज सज्जा तांकर दैनंदिन नीतिकर्म पई तांकर साज सब ता भीतर रहिछ आमे जमति बाहर को गले
0: अटेस्ट धरि की जाऊ नाही बाहर को भगवान तांक जिनिस को सिंधु करे नउचंदी
1: हमर
0: काठर सिंधु को
1: हमर टिके चंदन टिके दरकार सिंदूर टिके दरकार वस्त्र विभिन्न प्रकार दरकार ये सब जो सुरक्षित जिनिस रखिबा पई गोटे पात्र टिए आमे सांगरे नै कि जाउचे आटाच कथा जो आपण कहिले महाप्रभु गोटे बड़ पात्र नै जाउचंदी सिंधु को
0: माने समग्र पृथ्वी रे एभरी देवता विरल
1: समग्र
0: पृथ्वी रे एभरी देवता विरल जिए तांकर जिनिस पत्र नै किरि काठर निर्मित रथ रे काठ निर्मित सिंधु करे से निजे मध्य स्वयं काठ तेणु वृक्ष देवता वृक्ष को एते प्राधान्य देचंदी वृक्ष को एते परिमाण रे मुंडरे बसेला भली रखिचंदी आको अनुभव कले ही आमे जानी परिबा
1: भगवत गीता रे महाप्रभु गोटे कथा कहिथिन हे अर्जुन मम माया दुरत्या मो माया को जानिबा पई अति कष्ट आउ मो माया को जानी पारे किए ना सात वर्षर बालक ध्रुव जानी पारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यही जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही छोटिया मंत्र टी जप करी करी ध्रुव पाईगले मते तांको पाई मु माया आ विस्तार करी पारिले नाही तणु जिए भक्त हेब
0: से माया मोहर ऊर्धर जाई भगवानंकर श्री चरण
1: से मते जानी पारिबो जिए सेवा सेवक हेब से मते जानी पारिबो तणु
0: जाउ जगन्नाथ महाप्रभु जी सुंदर देखा जाउथिले तांकर बेश जेमती अति सुंदर आकर्षणीय एवं आसंता काली तो आपण देखिबे सुना बेसरे महाप्रभु क्विंटल क्विंटल सुनारे सज्जित होइकिरी सुना बेसरे श्रद्धालु भक्त मानकु दर्शन देबे आउ दि चारि घंटा पर देखिबे आउ तांकर देहरे सुना नथिबो
1: मांक कोलरु आसीचंती मांक पाखरु आसीचंती निश्चय सुंदर देखा दिबे माँ पाखरु जो संतान आसे आपण भल भाव जानती तार सौंदर्य बढ़ी जाए कर्म क्षेत्र जन जो फेरी थाए तार मुह सुखी जाए तेनाली महाप्रभु जो माँ कोल आसी से सौंदर्य निश्चित देखा जिबे आउ गोटे कथा आपण जानते माँ पुरा कही जिते दौ थी से खाऊ नसु खीब तोर हाथ लोके कहुथिबे खाइबा ठाकुर नीला चले जगन्नाथ तेणु
0: मो प्रताप बाबू भारत वर्षर विभिन्न जगह बुली किंतु ये जगह रे जो खाइबा जो पिंधिबा आनंद रे रहिबा परस्पर भितरे भाईचारा भाव सृष्टि करी वसुधैव भाव भावधारा रे उद्बुद्ध होई समस्त को आपणार करि नबा ये ज्ञान आउ कोठी मिलिबो नाही
1: जेते बेले महास्वार को आमे पचारिछु से कोठस्वार महास्वार से माने कहिचंती आमे मध्य निजे अवगत नुह महाप्रभु केते प्रकार अन्न व्यंजन बा केते प्रकार सुखिली भोग भोजन करुचंती तेणु तांकु गोटे साधारण भाव रे 60 पौटी बोली गोटे वर्णना रे रखी दिया जायछि किंतु महाप्रभु ततोधिक केते परिमाण रे भोजन करंती
0: 56 प्रकार रे भोग 60 पौटी
1: ता सीमित ता ठु ऊर्ध्व रे 200 प्रकार रे नैवेद्य रे नाम सब रहीछि
0: संकुडी निसंकुडी सुखिली केते प्रकार रे भोग जो भोग को वर्णना कले राति पाहिकि दिन होई जीव सरीब नाही ये भावमय देवता एते महान देवता तांकर सब महान से देउळ महान दांड महान चक्र महान मौददी महान तांकर महाप्रसाद मध्य महान
1: एही परी एक समय रे आम महाप्रभु निकट रे आमे एही परी सौभाग्य सुजोग सब पाइछे किए दर्शन करुचे किए श्रवण करुचे किए कीर्तन करुचे किए सख्य करुचे किए सेवा करुचे किए आत्मनिवेदन करुचे किंतु विभिन्न प्रकार रे आमे महाप्रभुंकर सानिध्य पाई निजे को गौरवान्वित मने करिबा इति अवसर रे
0: अहोभाग्य अहोभाग्य अहोभाग्य
1: निश्चित भगवान
0: इंदी आम समस्त को कृपा करंतु दया करंतु एवं आम विचारधारा को संशोधित करबा पई हमको प्रेरणा दियंतु
1: जो कथा वर्तमान सेठी चलचंचल हेलाणी श्रद्धा वाली तेणु प्रथम केन्द्र को आपण मानको श्रोता बंधु आमे नै जाउछु सेठारु दिव्य कथा प्रसंग श्रवण करंतु जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ
2: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ठीक प्रथम केन्द्र तले गजपति।

0: आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन योग्य हिताधिकारी सहायता असुविधा थिबा महिला तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नंबर 181 असहाय महिला शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दिखाई प्राधान्य प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़ा आम भाषा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशु सर्वांगीन उन्नति सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार
1: आगे गजपती उभा होई सिरे जोड़ी कब कर दुई की सीना सोधनी रे मार्जना करती रथ चक सब भूई की आगे पहंडी भूई की जो मार्जना कार्य करा जाउथिला वर्तमान रथर से भूमि को मार्जना करुछंती गजपती महाराज संप्रति राजगुरु द्वारा अभिमंत्रित तो जो होई जो सुनार जो मार्जनार जो सुना खड़िका से सुना खड़िका को धरी गजपति महाराज जो महाराज मार्जनर कार्य करिवे किंतु ता पूर्वर से वर्तमान कर्पूर आलती करुछंती कर्पूर आलती रे प्रभु निकट रे समर्पण करुछंती कर्पूर पुरेण मन हरेण सुवर्ण पंत्रांतर संस्थितेन प्रदीप्त भाषा सहसंगतेन निरांजनाते जगन्नाथ कुर्बे से कर्पूर वर्तिकार आलती पूर्वक प्रभु वर्तमान से जगन्नाथ जो अखिल ब्रह्मांडर पति से चका चका आखि चका नयन जी सबकि देखुचंती से कालिया शांत जो जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आज एकाकार से समस्त श्रद्धालु भक्त से भक्त सम्मुखे आज सर्वश्रेष्ठ भक्त जी आद्य सेवक चलती विष्णु वर्तमान से नंदी घोष रथरे छेरा पहरा कार्य करिबा को जाउछंती कारण एहा पूर्वरु तांकर जो राजनीति बंदापना कार्य ता समापन करि सारिलेनी आउ अपेक्षा करिछंती से जो दयणा माळी शुक्ल वस्त्र शुक्ल पुष्प प्रदान करिवे से शुक्ल पुष्प को ताहा को भंडार मेकअप रथर चतुर्दिगरे बा जो जो भूमि रथर भूमि सेठारे सिंचन करिवे आउ संस्कार होइतिबा से खड़िका जो झाड़ू को सुनार जो लगी अच्छी बेंट सो सुनार बेंटर जो नारिकेल जो खड़िका बा जो रही अच्छी तहार से जो रथर भूमि को ताकु सुंदर भाव मार्जनार कार्य करुछंती ये शोधनर कार्य वास्तव में जदि आम देखा ए मार्जन कौन जदि आम सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव चिंता करवा अंतशुद्धि बोली जहाँ कहा जाए कारण बहिशुद्धि जहाँ आम आखि को देखा जास्तव में से नुहे या मध्यम आम मन भितर थिबा समस्त सड़ रिपु जो सड़ रिपु को आम दमन करी मन भितर शांति मैत्री प्रीति आउ सब चीर आनंद आम रही प्रभु निकट में निजक समर्पण करने सहित प्रत्येक व्यक्ति को भल पाइबा सम्मान देवा स्नेह प्रदान करवा ये जात्रार आभिमुख्य होउची कहीं आम भितर जदि कौन सी विकार थी तेबे ताहले आमे केबे काकु आपणे पारिबा नाही ठीक सही परे सही परि भावरे शुक्ल पुष्प को जो सिंचन करा जाउची भंडार मेकअप जो एठारे आनी सिंचन करुछंती दयणामाळी सेवकं थारु ताहा से रथर भूमि को मार्जन करुछंती गजपति महाराज या परे चंदनर जल जहाँ जहुथरे चंदन गुंड जल रे मिश्रण करा जाइतिबो बहळिया ताकु मध्य पकाइबे सिंचन करिबे से संस्कारित करिबे आउ पुनर्बार पुणी आसिबो से चंदन गुंडर सिंचन आउ मार्जनार कार्य ए मार्जना आउ द्योतना भितरे जो सेवा समर्पणर भाव जे प्रभु मुछार मातर मोर मोर बोली कहिबाकु नाही बाटो तुम श्री चरणे अर्पण करुची घेन हे विश्व सम्राट मु सबकिछि आपणंक सम्राट हे विश्वर सम्राट मु आपणंक समर्पण करुची से प्रभुंकर निकटरे जो सेवा समर्पण को अर्पण करुचंती गोटिए परे गोटिए ज्येष्ठाय नम श्रेष्ठाय नम ए संस्कृति मध्य आमको से शिखौची गुरु गुरुजन मानक सम्मान कर तांकर आशीर्वाद लाभ कर कारण तांकर आशीर्वाद रे पंगु लिंग तिगिरी भली आम सबकि आम करते बड़ असाध्य कार्य हेले आउ एपटे

अछि आषाढ मासे सखी मेघ घड़ घड़ी बाहरिले प्रभु जे नंदी घोष चढ़ी नंदी घोष रथे जे नंदर नंदन तालध्वज रथे निजे भाई बलराम देवी रथ चढ़ी न सुभद्रा गमन सुभद्रा सहित विजय चक्र सुदर्शन जो चक्र राज सुदर्शन ए माँ देवी सुभद्रा रथ रे संयुक्त होती शक्ति सहित शक्ति संजोग जहा जीव सहित परमर मिलन भक्त सहित भगवान मिलन भाव सहित भाव हूँ जगन्नाथ प्रतीक विश्वास हूँ बलभद्रंकर प्रतीक विश्वास भाव को जी जाग्रत करुंती चेतन शक्ति आज समस्त श्रद्धालु मानकर मन जो मन भितर से शक्ति नुहे भक्तिर सुह छुटे दौंती से भक्ति धारा रे भक्तिर से रजुरे बांधी हो आगो को बढ़ी जाउछंती पुणी किंचित रही जाउछंती कारण पछरे सान भाई ए त्रिभुवन ईश्वर अपेक्षा करिछंती निर्देश को भौणी जतबले आगो को चली जेबे बड़ संख निकटवर्ती हेबे जो बड़ संखरे अतीतरे दिने जो शंखुआ नदी मालिनी बा जहाँ शंखुआ नदी गोटे धार मालिनी नदी प्रवाहित होते से छोटी रथ होते से छोटी रथ आज तीन गोटी रथ से परिवर्तित होती आम देखिपु श्रोता बंधु घंटुआ माने जेमती आसुले पहंडी ठाकुर झुली झुली आग को पछ को हली जाऊते घंटुआ माने से भाव झुली झुली घंट बादन कर पताका धरी जो बरकंदा जो बोली जहां कहुए सी घंटुआर ताले ताले घंटर से उद्घोषण ताले ताले से नाली पताका को सुंदर भाव दोहलाउछंती जहा हौची जे रथ चालिबार जो आह्वान आह्वान भितरे आगेरे अनेक भक्त ए श्रीक्षेत्र ए जो श्रद्धा बाली रु आम जो ठाए पर्यंत आम आखि दृष्टि आरूढ़ खाली मुंड माळो माळो सते जपरे प्रतीयमान हेउची ए जन समुद्र भितरे तीन गोटी रथ जहाँ बर्तमान पोत सदृश आग पछ हो रही अच्छा गोटे सुंदर सड़क धारा रे जो धारा भितरे आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि तुम सारथि विधि मन प्रगमे बच आम कहते ना टिके पूर्व मन बड़ दांडे देख विजय जगन्नाथ ये जगन्नाथ बड़ दांडे अच्छा सत किंतु ये रथ जो चली ये रथ जो रथ हूँ शरीर से शरीर भितर आज प्रभु निजे स्वयं विराजमान कर सौंदर्यशाणी से मांगर रथ विष्णु माया महामाया ब्रह्म शक्ति सुदुर्धरा लक्ष्मी कृष्णानुजा तेज रूप सौंदर्य शालिनी प्रभा मोहयंती जगत धात्री विष्णु भावानुसारिणी हृद प्रत्मा सन संस्था चराचर विमोहिनी ए समग्र विश्व को आपणार करि नै छंती जिए माया जो मोह माया सी अगम्य सी होचंती अबध्य से शोभामयी श्री संयुक्त कृष्णंकर से होचंती अनुजा से अनुजांकर रथ टिकिए आग को जितेबाला टणा हो सारी श्रद्धा बालीर टिकिए आग को गड़ी जाती कि श्रद्धालु माने जो सुभद्रा रथ को टाणुते से माने सेठारे रथ को टिकिए ना को अटकई वर्तमान जगन्नाथ रथ अभिमुखे यात्रा करूँ जगन्नाथ जहाँ रथ को छुईदे स्पर्श करदे मन भितर गोटे अपूर्व आनंद खेली जुए कारण दुख प्रभु से देखते सुख सीए मध्य आनंदर हेतु सीए बिना आउ किसी अच्छी तो बिना केमी विचुति जीवन आपणार बोली के नाही रे भक्ति प्रेम तोते तो पाइछु जीवन साथी दुहरे हे जगन्नाथ आपण तो होती ए संसार प्रत्येक प्राणर प्राण संचारिका शक्ति आपण नथिले ए संसार नथंता ए संसार सुंदर जो धरा केवल आपणंकर आशीर्वाद रे आउ आगो को आमे देखुचु वर्तमान सालबेगंकर पीठ जोटी भक्त सालबेगर जो रही बड़गंडी ठारे से सालबेगंकर पीठ आड़ को बड़ भाई बलभद्रंकर बलियार भुजंकर तालध्वज रथ अग्रसर होउछंती आउ श्रद्धा बालीर किचित आगोगु वर्तमान माँ देवी सुभद्रांकर रथ टणा हेछि एवं अपेक्षा करिछन्ति नंदी घोष रथ सुंदर भावरे वर्तमान दौड़ी संजोग चलिबो घोड़ा मध्य बंधा हे सारिलाणी केवल दौड़ी जगन्नाथक रथ रे लागिबो एवं यहाँ परे रथ टणा हेबा पई निर्देश दिया जिबो जहाँ फल नंदी घोष रथ

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट्स सप्लायरों को समस्या कम हो जिवो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही कि जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे

0: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई पारिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रही जीवो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

0: वो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जदि आपण एबे कौनसी नूतन कार किंबा बाइक किणिबा योजना करुछंती, एहा आपणको एबे बहुत सुलभ मूल्यरे उपलब्ध हेबो। जीएसटी परिषद छोट कार 350 सीसी

0: ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବାଇକ୍ 40% ନୂଆ ସ୍ଲାବରେ ଆସିଯିବ, ତଥାପି ଏସବୁ ଉପରେ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: GST सहित जड़ित नुआ खबर गुड़िक साधारण लोक एवं पूंजी निवेशकंकु आश्वासना देउछि। सबुठारु बड़ रिहाती खाद्यपेय सामग्री उपरे दिया जाइछि। ब्रेड रुटी छेना पनीर उपरे एबे कौनसी GST लागू हेबो नाही। एहा छोड़ा 33 जरूरी औषधर दर कम कर दिया जाइछि, जहाँफलरे चिकित्सार खर्च कमिजिब। लाइफ इन्सुरेन्स उपरे मध्य संपूर्ण भाबरे GST रिहाती कर दिया जाइछि, जहाद्वारा पॉलिसी किणिबा एबे सस्ता होइजिब। छोटो कार एवं 350 cc बाइक रु GST उठा जाय 18% कर दिया जाइछि, जहाँफलरे एबे बाइक किणिबार स्वप्न साकार हेबो।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଦେବା, ନିଜ ସହିତ କିଛି ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ନିଜକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେସବୁ କରିବା, ନିଜ ଖୁସିକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ସୋ ନିଜକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଲ୍ଫ କେୟାର ଡେରେ ନିଜର କେୟାର ନେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଗୀତରେ ମିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ, ଆଉ ଆମ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त।

0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर

0: और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है, हम मिलकर

0: डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के होंगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई

0: सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मासक मास विद्युत बिल बढ़िवारे लागिछि, भारी असुविधा हेलाणी।
2: हां जेहले करिबा कोन, घरे नाना काम रहुछि, गरम भी संभाली होउनी।
3: मामा कोन हैला एते चिंता रे काहेकि अछो?
1: किछि नै लो मा, ए करंट बिल कथा भाबुथिली। आउ कह, मो मामार पढापडी केमिति चलिछि?
3: भलो चलिछि बापा, आज स्कूल रे आम सर पीएम सूर्य घर योजना विषय रे कहुथिले, घरे सोलर पैनल लगाइले प्रति मास रे 300 यूनिट पर्यंत विद्युत बिल बचाई परिबा, आउ सरकार एथिरे 3 किलो वाट पे 1,38,000 टंका रे सब्सिडी मध्ये दउछंती।
2: हां सते लखिरु अधिक सब्सिडी।
3: हां मामा संचय भी सुविधा भी।
1: आसुनो 1-800-345-6718 किंबा 1912 रे कॉल करी ए योजना विषय रे अधिक बुझिबा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मासक मास विद्युत बिल बढ़िवारे लगी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: क्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छत ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्ष को 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671819 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: বর্তমান আসন্তু শনিবার হিন্দি সমাচার আকাশবাণী দিল্লি রু।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মোহাম্মদ জুবের। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच

0: जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस अग्निशमन सेवाएं अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक
2: नमस्कार। आज अंतिम मुख्य संवाद सह मु उदयनाथ स्वाई। सिंहद्वार सम्मुखरे लागिला तीनि रथ, आसंताकाली अनुष्ठित हेब सुनावेश। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ार आराध्य देवता बलदेवजीवर पवित्र बाहुड़ा यात्रा अनुष्ठित। नीट प्रश्नपत्र प्रकट मामलें एनटीएर 47 जन अधिकारी बहिष्कार कले सरकार। यंग इंडिया पार्लियामेंट 2026 को उद्घाटन कले राज्यपाल हरिबाबू कुंभम पाटी। प्रश्नपत्र प्रघट एवं परीक्षा अनियमितता मामलार त्वरित विचार पर फास्ट्राक कोर्ट प्रतिष्ठा संक्रांत चिठा विधेयक को कैबिनेट्र अनुमोदन। नूआदिल्ली में केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेन्द्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधि दलों मध्य आलोचना। भारत और रोमानिया मध्य अर्थनैतिक और पुंजनिवेश संपर्क वृद्धि आह्वान दे राष्ट्रपति। पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को समर्थन बंद न करिबा पर्यंत स्थगित रहिब सिंधु जल चुक्ति, स्पष्ट कला भारत। ग्लास्को राज्यगोष्ठी क्रीड़े भारत संतरणकारी श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैकस्ट्रोक सेमीफाइनाल को उन्नीत। देश में तीनोटी रासायनिक पार्क प्रतिष्ठा पर भव्य रसायन योजना को मंजूरी। राज्य में प्रतिष्ठा हेब ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर एवं एआई पार्क। सूचना प्रजुक्ति କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ବିପ୍ଳବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मामनंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत।

विभिन्न जैविक सामग्री अपूर्व संभार पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार विभिन्न क्रय स्वतंत्र रिहाती आसंतु आपणक अपेक्षार सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

ट्यून करिछंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक केतबेले केमिति चिकमिक खररे बर्षा दिनर सकाळ पसरा मेली थाए तो इंद्रधनुर सात रंगरे आकाश बेले बेले रंगीन दिसे सबुज पत्र उपरे वर्षा पानी टप टप हे पडु थाए आउ सेथिरे सूर्यंकर किरण जेमिति पड़ जाए सती जेमिति हीरा आउ मोती भली उज्ज्वल दिसि थाए।

0: खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15000 परिवार 2000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जाइछि ना ताहेले जो 4000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in
2: हर घर सूर्य घर
3: ट्यून करिछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टेक दिल से दिल तक समय जति के आगो को चली थाए आम मध्य आम कर्म पथरे सेति के तत्पर हो थाउ कारण वर्षा हो कि शीत खरा हो कि बसंत समय पर कहरे को केबे हेले अपेक्षा करेनी एक कथा आम ठारु अधिक आउ के जानि छि कहले सेति पई हमें समय अनुसार सब काम आरंभ करू आ समय अनुसार सब काम शेष करबा को मध्य इच्छा करू

सरधा बाली रा भावपूर्ण भक्त विमंडित परिवेश भितरे जुलाई 24 तारीख शुक्रवार सकाळ 8:30 मिनिट रु ओडिसा रा समस्त आकाशवाणी केंद्र एवं एफएम रेनबो रे सुनंतु पवित्र बाहुडा यात्रा रा प्रत्यक्ष दर्शी धारा विवरणी।

वेलकम बैक टू उनकर छंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। बेले बेले आमे भाबू आमे जहा कहुचो जहा करुचो से सबु एकदम ठीक कथाटा शत प्रतिशत ठीक नहले भी भूल मध्य नुह कारण आमर विचार बोध चिंता चेतना युक्तात्मक भावना दूरदृष्टि बुझीबार शक्ति निश्चय अछि बोली आमे कहुथिबा कथा करुथिबा काम उपरे आमर विश्वास रहिबाटा मध्य स्वाभाविक किछि सिखिबार इच्छा बा जानिबार आग्रह मनिषकु उच्च करिथाय सदा सर्वदा मन भितरे आवेग सृष्टि करे काहाठु किछि भलो उपदेश हो बा भलो शिक्षा हो ग्रहण करिबाकु हृदय बारंबार आंदोलित होता है।

0: ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोरे एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
3: मु कहुतली बहुत किछि जीवन रे सिखिवार अछि। हां, जीवन रे अनेक किछि कथा सिखिवार अछि, जानिवार अछि। आम आखि आगरे दिशुथिबा रास्ता जे सुविस्तृत सुदीर्घ, ए कथा जानि मध्य आमे बेले बेले बाट बणा हौ, अन्यमनस्क हौ, जहाँ फल सामयिक विपद आपदर सम्मुखीन मध्य आमे हेउ।

0: जने जिदिया पड़ोसी अछि पूरा कॉलोनी सोलर पैनल लगे सालेनी किंतु से मानिबा को प्रस्तुत नथिले सतरे बिजुली बिल जीरो आसी पारे मु कहली पो ना हेउछि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना तापरे जण जण करी समस्तंकर बिजुली बिल जीरो आसीबा को लागिला तापरे कहले एबे लगेबा को ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई पंजीकृत करंतु pmsuryaghar.gov.in हर घर सूर्य घर
1: ट्यून कर छंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे चली छि मॉर्निंग मेलोडी ई सकाळ आमा पई आसी छि गुटे सुंदर उपहार रे सब सकाळ आमा पई गुरुत्वपूर्ण सब समय मध्य आमा पई बेस गुरुत्वपूर्ण तबे भल कहिबा भल करिबा भल सिखिबा भल कथा सुनिबा भल जिनिस देखिबा भल कथा जानिबा एमति किछि सुंदर मानसिकता जदि आम भितरे रहिबो तबे निश्चय आमर कर्म उच्च मानर हेबो

0: এইটি শেষ করছু মর্নিং মেলোডি আকাশবাণী এফএম রেনবো কটক। এবে শুনন্তু প্রায়োজিত কার্যক্রম ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস। আজ শুনন্তু এর ভাগ এক।
1: We bring you a talk on environmental jurisprudence by Anna Apriya, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: Jurisprudence ki baat karte hain to India mein koi bhi jurisprudence ho, whether environmental or otherwise, the starting point is always the constitution. To constitution kis subject ke bare mein kya bolta hai, pehle hum ye dekhte hain, and then we see, we look at the laws which are created as a result of the powers given by the constitution. But ek peculiar baat hai Indian constitution ki, ki isme bahut log, bahut ek school of thought hai jinka manna hai ki environmental constitution environmentally blind tha in the very beginning when in 1950s it was adopted, because the term environment, environmental protection, ecological conservation, ye sare terms nahi the usme. But other school of thought on the other hand, which I also agree with, says that silence on the word environment does not mean ki koi intent nahi tha constitution ka environment ko protect karne ka. Later on we'll see kaise article 21 jo ki hamesha se constitution ka part raha hai usko hi use karke hamari human rights and right to dignity under article 21 ko use karke environmental rights aage evolve hue hain. Aur ye main provisions hain jo constitution ke environment ke bare mein directly baat karte hain. Directive principles 48A mein और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशन्ड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. And few more provisions जो कि usually छूट जाता है लोगों के notice से, क्योंकि 48A and 51AG are the most important ones. But if you look at the provisions relating to local government, which is municipal corporations, उसमें भी explicitly functions में उनके mentioned होता है. If you look at part 9A of the constitution, which talks about municipal corporation, local government generally, कि you have to make a draft development plan for ecological conservation and environmental protection. तो जो district और metropolitan planning committees हैं उनके respect में specifically environment protection का mention है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974

में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, विच इज मोर ऑफ एन अम्ब्रेला एक्ट जिसमें सारा एनवायरमेंट की सारी चीजें कवर होती हैं, बट दैट केम आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी. स्पेसिफिकली सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो होते हैं जो वाटर और एयर एक्ट के अंडर काम करते हैं, एंड EIA नोटिफिकेशन जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से ही एमिनेट करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again. But India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites. एंड बेसिक कन्वेंशन जो वेटलैंड की बात करता है, तो ऑल्सो वी नो तो आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स वी हैव ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल द पार्लियामेंट हैज ऑल्सो अडॉप्टेड इट इन टू आर डोमेस्टिक लॉ. तो दिस इज ज्यूरिसप्रूडेंस में, व्हेन वी टॉक अबाउट ज्यूरिसप्रूडेंस इट इज ऑल अबाउट लॉ. सो आई एम टॉकिंग

0: जो वेटलैंड की बात करता है, तो ऑल्सो वी नो, तो आफ्टर अडॉप्टिंग ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, वी हैव ऑल्सो एज फार एज पॉसिबल द पार्लियामेंट हैज ऑल्सो अडॉप्टेड इट इन टू आर डोमेस्टिक लॉ. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner कि कितने तरीके के rights हैं. Environment law कहाँ कहाँ से आ सकता है. So ये constitutional rights और fundamental rights, क्योंकि like I mentioned in the very beginning, उसमें mentioned नहीं था constitution में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे develop हुआ through amendments. But उसमें Supreme Court का particularly काफी important role रहा है. तो starting with one of the cases, तो it is something which people say in environmental law circles, कि if we talk about the journey of environment law, वो किसी river से या tree से नहीं शुरू हो रहा है, forest से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक drain से शुरू हो रहा है. Because this was the case of Municipal Council Ratlam versus Vardhichand का case, जिसमें there was an open sewage situation, sanitary issues थे एक छोटे से town में मध्य प्रदेश के, वहां पे citizens went to court and they asked the magistrate to intervene because statutory manner में CRPC जो पहले हुआ करता था, which is now DNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहां पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्सन्स हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाय मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन व्हेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंड रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इम्प्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स है अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देयर वर फ्यू केसेस, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देयर इज अ राइट टू लिव इन अन हेल्दी एनवायरमेंट, वो दून वैली का केस था स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी

0: एनवायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, होलसम एनवायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एम सी मेहता, ही वॉज अ बिग टाइम एनवायरमेंटलिस्ट एंड लिटिगेटर. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी एनवायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, व्हाट एमसी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस. तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, एमसी मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरी से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरी से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है, विच इज पोल्यूटिंग द गंगा रिवर. इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज. सो दिस नाउ राइट हैज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टीएन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया, जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

हाँ साथी भारतीय संगीतर विशाल परिसरर अनेक कंठशिल्पी निजर अलगा शैली और स्वर माध्यमरे श्रोतांक हृदय स्थान तयारी करछंती आमे आज जहां विषय कथा बसी एमेति जने प्रतिभाशाली गायिका से आउके नहुंते से होचंती महालक्ष्मी आयर तांकर मधुर स्वर स्वच्छ कंठस्वर भारतीय चलचित्र संगीतर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि तेबे साथी आगको आमे तांका विषयरे ढेर सारा कथा हवा किंतु वर्तमान सुनै दउछि तांका कंठरे सुंदर गीतटी एन्जॉय करथंतु कनेक्टेड हे रहथंतु 100.4 आकाशवाणी एफएम डेनबकटा दिल से दिल तक सहिता

वेलकम बैक वन्स अगेन ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम 10 बकाटक दिल से दिल तक सचले जी कलाकार हां साथी महालक्ष्मी आयर का गायन शैली शास्त्रीय संगीत र श्रृंखला आधुनिक संगीत र सहजता और भावप्रवणता र सुंदर समन्वय देखिबा को मिले तांका कंठरे थिबा स्वाभाविक माधुर्य एवं गीतर भावक ठीक भाबरे प्रकाश करबा क्षमता तांका अन्य मनंगठारु अलग करी थाए से हिंदी समस्त विभिन्न भारतीय भाषार संगीत रे निजर कंठदान मध्य करिसंती

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम डेन बकटक दल सदल तक सो चली कलाकार हां साथी महालक्ष्मी आयरक गाइबा शैली सबुठार विशेषता हेउची तांको कंठर स्वाभाविक माधुर्य तांको स्वर सुनिले गोटे सहज मनोहर अनुभूति हुए से गीत को अत्यधिक जटिल करिबा परिवर्ते शब्द और भावना को गुरुत्व दे गाइबारे दक्ष कंठरे थिबा सूक्ष्म भावना गीतर अर्थ को श्रोतांक निकटरे पहुंचाई थाए जहाकी गोटे भल गीत केवल सुंदर स्वर रे नुहे भावनार सठिक प्रकाश रे सफल हुए महालक्ष्मी आयर एही कथा को निज गायन रे माध्यम रे प्रमाण करिछंती।

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छत ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345678 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्री प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोष यात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाति। आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

फ्रेंड्स ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक देखंथ ना कथा ही हो समय के तळे दिन 12टा बाजि सलेनि हां सदी समय भी कहा हिसाब रे चले सीता निज हिसाब रे चले केवल आमे ता सहित ताळ दे आग को जिवार अछि समय ता बाटे रे चलु ना किंतु वर्तमान समय ही जाइछि आपनकर फेवरेट शो किछि कथा किछि गीतर सुजाता अच्छी आपण मानक सहित किछि मीठा मीठा कथा हवा मीठा मीठा गीत मध्ये सुनेबी सेहिपय ट्यून करि रहितां तो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक साथी श्रावण आसिले प्रकृतिर रूप बदली जाए आकाशर नीलिमा उपरे कळा कळा मेघर चादर ढांकी जाए को दूर दिगंत रु भासी आसे मेघर गर्जन माटी को छुई जाए बर्षार शीतल धारा आउ सुखिला धरणीर छाती रे प्रथम वर्षा बिंदु पड़ा मात्रे माटी उठे एक अद्भुत सुगंध लगे जमी धरणी मा दीर्घ अपेक्षा पर तार प्रिय संतान को पाई हसी उठुची हाँ साथी श्रावण केवल गोटे ऋतुर ना नुहे अनेक स्मृतिर ना यह मनरे गभीरता लुचिथिबा असंख्य कथार ना श्रावणर वर्षा जेतेबेले झरझर हो झरी पड़े ना मनर को कणरे लुचिथिबा पुरुणा स्मृति गुड़िक जागे उठे झरका पाखरे बसी वर्षा को देखिदेले मन हुए केही जेमिति दूर आकाशरु आम पई एक चिठी नै आसीछि से चिठीर प्रत्येक शब्द रे रहिछि माटीर गंध मेघर मादकता और भिजा मनर अकुहा कथा सेति पई त मन कोहे सब बेले श्रावण रे श्रावण त मेघ आणेबु तेबे साथी आगु त आमे ढेर सारा विषय कथा हो किंतु वर्तमान सुने दिस गोडे सुंदर गीत एंजॉय करथन त कनेक्टेड रहथन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहिता

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800 3 4 5 7 1 8 रे जोगाजोग करंतु।

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकटक दिल से दिल तक सो चली किसी कथा किसी गीत हाँ साथी श्रावण मेघ आसवे गोटे अलग आनंद रही था तप्त ग्रीष्म दाहरी जेतबले धरणी फाटी जाए गछपत्र जेतबले सुखी जाए नदी नालर जल जेतबले कमी जाए सेतबले समस्ते अपेक्षा करती बर्षार आगमन चाषी आकाश को चाह रहे तार आशा थाए केबे आसीबो से कला मेघ केबे झरिबो से धारा श्रावण केबे तार जमी रे नुवा जीवन फुटिबो साथी मेघ आसे पवनर गति मध्य बढ़ी जाए गछर डालर डालपत्र मध्य दोहली जाए आकाशरे बिजुली जमके तापरे हठात आरंभ हुए वर्षा टीण छत वर्षा बिंदुर टोपाटपा शब्द गछपत्र वर्षार झिपझिप ध्वनि पोखरी जल उपरे वर्षा बिंदुर छोट छोट तरंग सबकिछि मिसी गोटे सुंदर संगीत सृष्टि करे किंतु वर्तमान समय हेछि गोटे संगीतर गोटे ब्यूटीफुल सॉन्ग सुने दउछि एन्जॉय करू थन तो कनेक्टेड हे रहथन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहिता

पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जे कोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली छी किछी कथा किछी गीत हां सथी श्रावणर मेघ केबे मनरे आशा तो केबे मनरे विषाद आकाश रे जितबले मेघ ढांकी जाए मनरे गोटे अजणा नीरवता आसी थाए

पुरी थारे श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा रो प्रत्यक्ष दर्शी धारा विवरणी आकाशवाणी रे प्रचारित हेबो जुलाई 24 तारीख शुक्रवार सकाळ 8:30 रु रथ टणा शेष हेबा पर्यंत ओडिसारो समस्त आकाशवाणी केन्द्र एवं एफएम रेनबो रे एही धारा विवरणी एक संगरे प्रचारित हेबो। जगन्नाथ संस्कृति और परंपरार विशिष्ट भाष्यकार मानंक द्वारा धारा विवरणी प्रदान करा जीवो।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
0: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
0: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
0: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
0: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
0: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
0: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए

0: सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को, हम पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसलकर गिर गया।
3: चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
3: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
7: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
8: जी महाराज।
7: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
3: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
7: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
3: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
7: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
3: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
8: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
2: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
9: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
2: राजा वेश बदलकर